रामची साहेब एकोंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सेवं गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच सोच सोच न हो वे जे सोची लख पर जुपे जुप न हो वे जे लाए रहा लिपतार भुखिया भुगन उतरी जे वन पुरिय वर से न पलक होए तक न छल नल किव सचियारा होइए किव गुरे तुते पल हुकम रजाई छरना नानक लिखिया नल हुकम ही हो न कर हुकम न के आ जाय हुकम ही हो वंजी हुकम ले बरियाई हुकम ही उत्तम नीच हुकम दुख सुख पाए एक न हुकम ही बख्शीश हुकम सदा बबाए हुकम अंदर सब को बाहर हुकम न कोय नानक हुकम जे बुझे त होवे कह न कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को तचन निशन गावे को गुण वरिया अचार गावे को विख्या विकम बिछर गावे को सच तरे तंके गावे को जीले फिर दे गावे को जापे दी से दूर गावे को वेह हर हा दूर कथे न कथे न आवे तुत कत कत कती को दिकुत कुत तेदा दे ले दे तत पाए जुगा जुगंतर का इकाय हुकम में हुकम चलाए राव नानक विस्ते वे परवाव सच साहेब सच नाय वकिया वाव अपार आखे मंगे दे दे दात करे दातार फिर के आगे रखिए जिस दिसे दरबार मौके बोलन बोलिए जिस सुंदरे प्यार अमृत वेला सच नाव बरियाई विचार कर्मी आवे कपरा नदरी मुख द्वार नानक एवे जानिए सत आपे सच यार तप न जाए कि तन होए आपे आप निरंजन सोए जिनसे व्यातिम पाया मान नानक गावे गुण निदान गावे सुन्य मरबा क्या बाव दुप पर हर सुख ले जाए गुरमुख नादान गुरमुख वेदान गुरमुख वे रसमाय गुरीश्वर गुर गौर बर्मा गुर कृपा की माए जे हो जाना आका नाही कह न कत न जाए गुरे कते बुझाए सब न जिया का एक तत्ता सोमे बसर न जाए तीर्थ न वजे तस पावा बिन बने के नाय करी जे तिस सिर तु पाई वे का विंके में मिल ले मध विच करन जमर महान जय कुर की एक सुनी गुरे कते बुझाए सब न जिया का एक तत्ता सोमे बसर न जाए जे चुक चारे आर जा हुर न सुनी होए नाव कंद बिच जानिए नाव सले सब कोय छंग नाव रखाए के जस किरे चकले जे तिस नरन आवे दा पर न पुछे के कीता अंदर कीता का दोष दोष त्रे नानक नी गुंग गुंग करे गुणवंतिया गुंदे तेहा कोय न सुजे जे तिस गुण कोय करे सुनिए सिर पिर सुना सुनिए तरथ लखस सुनिए तीपलो पाताल सुनिए तो न सके कल नानक भगता सदा विगास सुनिए दू पाप का नस सुनिए ईश्वर भरम इंद सुनिए मोत सलाम मंद सुनिए जो जुगा तन विद सुनिए शत सिमृत विद नानक भगता सदा विगास सुनिए दू पाप का नस सुनिए सत्संतो ज्ञान सुनिए असत का इश्नन सुनिए पर पावे मन सुनिए लगे सहेश ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिए दू पाप का नस सुनिए सरागना के गा सुनिए शिर पे पदिशाओ सुनिए अंदर पावे राव सुनिए हाथ वे आसकाओ नानक भगता सदा विगास सुनिए दू पाप का नस माने की गत कहे न जाए जे को कहे कछे पछताए राकर काम न लेकन हार मन कव करम विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मंकोए माने सुर तुवे मंबुत माने सगमन राखी सुत माने मोचनता न काय माने जम के सत न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मंकोए मने माक तक न पाए मने पत्सियों पर गजाए मने मगन छाले पंथ मने तरम सती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मंगोए मने पावे मुख द्वार मने परवारे सादार
Mane tare tare guru sik, mane nanakave navik, esa nam narinjan hoi, jeko manjan ne mankoi, panch parvan, panch pardan, panche pavitir ke man.

आत्कुरेन्न में जुगात्कुरेन्न में सात्कुरेन्न में श्री गुरुदेवेन्न में आत्कुरेन्न में जुगात्कुरेन्न में सात्कुरेन्न में श्री गुरुदेवेन्न में आत्कुरेन्न में जुगात्कुरेन्न में सात्कुरेन्न में श्री गुरुदेवेन्न में इन्हेल Exhale. Okay, before we start the set, we'll do some few warm-ups. Let's go on our hands and knees. Let's do some cat-cow. And begin cat-cows.